तावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ नाले।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

के हाँ हाँ और सुनो और सुनो। हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो। हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: Good morning. स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन की दुनिया में। बुधवार वर्ष 2026 के मई महीने की 27 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। और हमारे बहुत सारे श्रोता चाहते हैं कि भाई आज ईद मुबारकबादी का पैगाम उनके नाम हो जाए। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया तो भाई काजल का प्रोग्राम मिस कर गए हैं आप। काजल जब से लौट के आई है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए कॉफी लौट आई है। कॉफी का कप आ जाता है। मौसम खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन मुहूर्त है। और भाई ईद का अगर मौका है तो फिर ईदी की जरूरत है। जहां की ईद हुई देखकर फलक का चांद, आसमान पे चांद नजर तो आएगा तो ईद हम मनाएंगे। उठा के हाथ खुदा से तुझी को मांगेंगे और मुराद दिल की सभी आज उनसे पाएंगे। हम आज दिल के उन्हें तोहफे में पेश कर देंगे, वो ईदी मांगने को हाथ जब बढ़ाएंगे। ये रस्म जिसने बनाई है शुक्रिया उसका। मिलेंगे ईद उसे आज गले हम लगाएंगे। वो फूल जूड़े में गूंथेंगे आज मेरे लिए, वो हाथ मेहंदी से मेरे लिए सजाएंगे, नजर से आज करेंगे सलाम हम उनको, वो चूड़ियों से भरे हाथ जब उठाएंगे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Eid Mubarak from Leica Radio Network.
0: जहां की ईद हुई देखकर फलक का चांद नजर तो आएगा तो ईद हम मनाएंगे। उठा के हाथ खुदा से तुम्ही को मांगेंगे और मुरादे दिल की सभी आज उससे पाएंगे। नजर से आज करेंगे सलाम हम उनको, लाल चूड़ियों से भरा हाथ जब वो उठाएंगे खनकाएंगे।

0: आपने जैसा अब आगाज हो गया है मनोरंजन प्रोग्राम का, दो गीत हमने परोसे बैक टू बैक संगीत के तहत। आपने पहला गीत सुना फिल्म जीना मरना तेरे संग से, एंड द सॉन्ग वाज तेरे लिए लाया हूं मैं लाल लाल चूड़ियां। ईद का त्योहार है और भाई लेन देन उपहार हैं तो उनमें चूड़ियाँ भी आती हैं, बिंदी भी आती है, सुर्खी भी आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं श्रृंगार की। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्या है छोड़िए जी, क्या रखा है सच्ची बातों में। मिले जो कड़ी कड़ी, ये दूसरा गीत था कस्मे वादे फिल्म से, और ये गीत गा रहे थे रफ़ी साहब, किशोरदा और आशा भोसले। तो भाई इस तरह से हुई शुरुआत मनोरंजन कार्यक्रम की, और अब आपको हम पाउंड का रेट बताते हैं। हाँ, इसी मोड पर तो हम आपको फाइनेंशियल जगत में ले जाते हैं, क्या भाव चल रहा है पाउंड का भारतीय रुपये के खिलाफ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK and State Bank of India UK. At this moment they are offering 128.15 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। और साहब इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है भाई, वो जून महीने के एंड तक अगर आप पैसे भिजवाते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: 105 shows pura kare pachi have lesser ma avi rahyu che ek dhamakedar international gujarati comedy natak
3: Jay's Entertainment leine avi rahya che sakhna re jo husband ji
2: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सकना रहे जो हस्बैंड जी।

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: और आइए अब जाम छलकाएं उनकी आंखों के नाम, उनके होठों के नाम, जो स्वयं किसी जाम से कम नहीं है। आंखों में झांके तो ठेके पे जाने से बच जाते हैं, शराबियों के पैसे बच जाते हैं।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और ये प्रोग्राम दोपहर बाद 1 बजे तक मैं लेकर के आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। भाई यहाँ ब्रिटेन में वो हीट वेव कह रहे हैं लोग चल रही है, हालांकि इतनी गर्मी की हम लोग तो आदी हैं, उस जगह से आए जहाँ इससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आज वहाँ बांदा एक जगह है भारत में, वहाँ पर टेम्परेचर 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तो अभी 30 से नीचे 30 से ऊपर भी गया है, 34-35 तक, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक भाई 49 मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें भी लोग बिलबिला जाते हैं और कुछ लोग पानी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और बड़े दुख की बात है कि स्विमिंग करते हुए 5 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें 4 टीनेजर्स, एक 12 साल का बच्चा भी था, एंड ए मैन इन हिज 60s ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग द लेटेस्ट हॉट वेदर। भाई गर्मी का मौसम जरूर है, लेकिन गर्मी से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन ऐसा रिस्क लेने से कि आप अपने जीवन को खतरे में डालें बचिएगा, और ये बड़ी दुखदायी खबर है गर्मी के मौसम से। आज के दिन के साथ जुड़ने वाले और समाचार कौन कौन से हैं, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने गैंग रेप और बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। यह अलग से केस है, दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को आज बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से थोड़ी आंशिक राहत मिली है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आईपीसी और पोस्को कानून के तहत गैंग रेप और बच्चे के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न सेक्सुअल टॉर्चर के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि नाबालिग से रेप के मामले में उनकी सजा बरकरार रखी गई है, जिसमें उनकी उम्र कैद की सजा जारी रहेगी। फिलहाल आसाराम टेम्परेरी जमानत पर बाहर हैं और सोमवार को ही उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि अप्रैल 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके के बेरानी गांव में पैदा हुए थे आसाराम, और उनका असली नाम असुमल हरपलानी है। युगांडा से बेंगलुरु आई एक महिला में इबोला के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन बुधवार को यानी आज महिला की सभी जांच रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई हैं। कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर रजनी एम ने बताया है कि हमने सभी 4 सीरोटाइप की जांच की, हमें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें चेक किया, ये रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने पाकिस्तान पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने आज कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है। एम्बेसडर पर्वत नेनी ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि आजाद भारत की शुरुआत ही पाकिस्तान के सीमा पार हमलों से हुई थी, जिनका उद्देश्य भारतीय इलाकों पर कब्जा करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कई युद्ध छेड़े और लगातार सीमा पार टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और शांति सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। पश्चिम बंगाल की पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणियों के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के नेता और एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में ये शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मी के कारण देशवासियों से अपील की है। भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जिंदगी में गर्मी से होने वाली कई मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें जरूर बरतें। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि गर्मी तो झेल लेंगे लेकिन इस महंगाई से जनता के पसीने छूट रहे हैं, इसका क्या करें। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार SIR करने का अधिकार है। इंटरनेशनल खबरों में चीन ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में पाकिस्तान और दूसरे देशों की मध्यस्थता का वो समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस में प्रेस से कहा कि मौजूदा हालात में सबसे अहम बात अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत है क्योंकि यही एक मुख्य पक्ष है। केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर आज बुधवार को सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। कांग्रेस ने CBSE के मार्केट पोर्टल पर सवाल उठाए हैं, कहा कि ये छात्रों के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी ने कल मंगलवार को एक्स हैंडल पर एक न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक हैकर ने एक टीवी चैनल CBSE के मार्केटिंग पोर्टल को हैक किए जाने की बात कही है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग में पाकिस्तान का बिचौलिया बनना परेशानी भरा है। लिंडसे ग्राहम अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ही सीनेटर हैं। लिंडसे ग्राहम ने कल मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह काफी समय से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का बिचौलिया बनना, मध्यस्थ बनना मुश्किल और परेशानी भरा है। उनका इसराइल के प्रति विरोध बहुत पुराना है, इसलिए वो इसराइल के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि यह बात भी साफ है कि ईरान के फौजी जहाज पाकिस्तान के एयरबेस पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े नेताओं को इसराइल के खिलाफ पुरानी बयानबाजी करने की आदत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालिफायर एक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के बाद टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या का रिएक्शन आया है। विजय माल्या ने कल रात एक मैसेज पोस्ट किया, लिखा कि आज रात धर्मशाला में शानदार जीत के लिए RCB को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बेंगलुरु के शेरों की तरह जोर से दहाड़े और डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर IPL के फाइनल में पहुंच गए। भाई एक और मैच आज खेला जाएगा और उसके बाद भाई फाइनल तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं 31 मई को दो कौन सी टीमें आमने सामने होंगी। IPL की रिपोर्ट देते हुए हम आपको बताएंगे। और एक खबर यह कि इसराइल की ओर से साउथ और पूर्वी लेबनान में किए गए हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि ताजा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये थी आज की खास खास खबरें। समाचार समाप्त होते हैं।
0: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथॉल ट्रेवल वालों का एक संदेश है भाई, नोट कर लीजिए. दे से दैट मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथॉल ट्रेवल. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. साउथॉल ट्रेवल को विजिट कीजिए या उनका फोन नंबर मिलाइए 0208 574 8410.

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
1: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्कार 707, स्कार ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
4: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
5: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.
6: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: और 1 pound इन इंडियन करेंसी 128.65 rupees, पाकिस्तानी 374.54 rupees, श्रीलंकन रुपए 439.5, बांग्लादेशी टका 165.11 एंड अफगानी 84.41.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 107.46 pounds per gram.
1: Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई कल के मैच की बात करें तो कल कमाल कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, अपनी जगह पक्की कर ली है फाइनल में। उन्होंने कल 254 रन ठोके 5 विकेट के नुकसान पर, जिसके मुकाबले में गुजरात टाइटन्स सिर्फ 162 रन बना सके। और साहब इस तरह से आरसीबी इज गोन थ्रू टू द फाइनल मैच विच विल बी टेकिंग प्लेस ऑन 31st। सामने कौन होगा? वेल, आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच। भाई ये टीमें भी तगड़ी हैं, देखते हैं कौन जीतता है। राजस्थान रॉयल्स, पिछली बार इनका मैच देखा तो भाई दर्शकों में यानी मैच देखने वालों में लक्ष्मी मित्तल भी बैठे थे राजस्थान को सपोर्ट करने के लिए। आज देखते हैं कौन कौन देखने पहुंचेंगे और क्या क्या दिखाएंगे आरआर के खिलाड़ी। नतीजा हम बताएंगे, आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा लाइक का गोल्ड रेडियो पर स्कोर के आंकड़े बताए जाएंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions, only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry.
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
3: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCA.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड YAP TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
5: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Milan film ka ye geet hame lekar ke chalega 11 baje ki khabron tak।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, अब इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो चुके हैं, मनोरंजन के दूसरे घंटे का आगाज हम करते हैं चिंतन से। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज की चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं एक बार फिर से भाई हमारे परम मित्र डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा आलेख। याद दिला रहे हैं कि रवि जी, आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि से अभिप्राय भी बरसी है, ईद भी है आज। हम अपने श्रोताओं को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन भाई याद करते हैं भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को, उनकी जिंदगी की कुछ बातें। वैसे तो आपको बता दें कि भाई पॉलिटिक्स में जो होते हैं उनके समर्थक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हर लीडर में ऐसी होती है कि जो उन्हें लीडर बनाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विषय में हमें एक आलेख संदीप सोनी ने भी भिजवाया। संदीप कहते हैं कि मेरी ओर से भी आज पंडित जी को श्रद्धांजलि समर्पित कीजिएगा। भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री को आज़ादी के बाद ये जो ताज मिला, प्राइम मिनिस्टर का जो पद मिला, ये कांटों से भरा था। बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी परेशानियाँ साथ आई थी। धीरे धीरे देश संभला, अपने पांव पर खड़ा होने लगा। आप जानते ही हैं कि आज़ादी मिलते ही पड़ोसी देश से आक्रमण हो गया। कुछ समय बाद फिर चीन ने जंग छेड़ी तो भारत तो तैयार नहीं था। शांति की बातें हुआ करती थी, पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित करते थे नेहरू जी। तो ऐसे में अचानक एहसास हुआ कि भाई भारत को शक्ति चाहिए, फौज चाहिए, हथियार चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मूल भावना थी, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, उन पर नेहरू जी टिके हुए थे। 27 मई आज का दिन पंडित जी की याद दिलाता है। वैसे भाई आज कमला एकादशी का विशेष महत्व भी है, आज ये तिथि भी है। लेकिन 1964 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। वे आधुनिक भारत के इतिहास में इतिहास पुरुष माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज ही के दिन 27 मई को 1703 में रूस के प्रसिद्ध शहर सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई थी। और भी कई बातें आज के दिन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन पंडित जी की पुण्यतिथि। मुझे याद है उन दिनों भाई हमारे एरिया में रेडियो किसी किसी घर में होता था, और जब वहाँ से ये खबर प्रसारित हुई और सारे संगीत के कार्यक्रम रद्द हो गए, रेडियो पर सिर्फ एक सैड ट्यून बज रही थी और पंडित जी के बारे में बताया जा रहा था कि पंडित नेहरू नहीं रहे। लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी बातें, उनके संवाद और उनके काम लोग आज श्रद्धा से याद कर रहे हैं। उनकी एक बात जो बहुत प्रेरक रही है भाई, चिंतन की जो शोभा पहले ही बन चुकी है, वो बात है आराम हराम है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इस देश में आराम परस्त होते हैं, कहते हैं कि जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो काम क्यों करें, इतने पागल नहीं है हम। लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई पैसे मिल भी रहे हो तो भी काम करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, और समाज सेवा के कामों की जिम्मेदारी ले लेंगे। अब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए 18-18 घंटे काम करते थे। आखिर दिनों में तो डॉक्टर्स ने उन्हें वार्निंग दी, पंडित जी संभल जाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जिम्मेदारियां इतनी,
एक बार बच्चों ने नेहरू जी से पूछा था कि आप हमेशा अपने कोट पर गुलाब क्यों लगाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, बच्चे और फूल दोनों देश का भविष्य हैं, इन्हें प्रेम और संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, देखभाल चाहिए। इसीलिए भाई पंडित जी चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे बच्चों के लिए। लेकिन सबसे उनका जो प्रेरक सेंटेंस, जो बात है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से है। वो लाइनें जिन्हें वो लिख करके अपने तकिए के नीचे रखते थे, सोते थे पढ़ के, उठते थे तो उठते ही वो पढ़ते थे। जानते वो लाइनें क्या थी? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। कि जिंदगी में आकर्षण है, विश्राम है और मोह बहुत है, लेकिन अभी मुझे अपने कर्तव्य को निभाना है, वचन पूरे करने हैं। before I go to sleep, या sleep से मतलब है before I sleep forever, before I leave this world I have to complete lot of jobs, what our responsibility I have to perform। और भाइयों, 27 मई 1964 का वो दिन था कि नेहरू जी आखिरी सांस तक काम तो करते ही रहे, पर डॉक्टरों की वार्निंग जो है वो सच साबित हुई। पंडित जी ने आखिरी सांस ली, लेकिन अपने पैगाम में, अपने संदेश में वो आज भी जिंदा हैं। कह रहे हैं, आराम है हराम। सबसे बढ़िया तरीका है स्वस्थ रहने का, काम करते रहिए। जानती है वो जो ईसीजी की लाइनें होती है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो जिंदगी की निशानी है। अगर वो एकदम सपाट सीधी लाइन में हो तो वो मौत की कहानी लिखती है। चलना ही जिंदगी है, चलते रहो सुबह शाम।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भाई हमारे श्रोताओं की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप बता दें आपको कि ये चिंतन पेश किया गया। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है। 27 मई 1964 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बहुत सारे काम उन्होंने किए, पर जो काम अधूरे रह गए बाद में आने वाले नेताओं ने उनसे प्रेरित होकर के उस दिशा में कदम बढ़ाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका नारा था आराम हराम है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं बिफोर आई गो टू स्लीप। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें डॉक्टर जितेंद्र बख्शी और हमारे मित्र संदीप सोनी ने भिजवाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो गीत हमने आपको सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म अपना घर। प्रेम धवन के बोल थे और संगीत था महान संगीतकार रवि का। काफी पुरानी फिल्म रही होगी अपना घर। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथी गा रहे थे। उस जमाने में भाई शायद प्रेमनाथ हीरो होते थे। प्रेमनाथ, श्यामा, नंदा, दीज वर द आर्टिस्ट वर्क्ड इन दिस फिल्म। आज के चिंतन की शोभा बना गीत आराम है हराम। तो भाई कुछ ना कुछ करते रहिए, हिलते डुलते रहिए, थोड़ा बहुत चलते रहिए। स्वस्थ रहना है तो, मस्त रहना है तो, तंदुरुस्त रहना है तो, जबरदस्त रहना है तो आराम है हराम। यह था आज का विचार, आज का चिंतन। और अब याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त तो होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए लौटते हैं अब अपने मूल रंग की ओर, मनोरंजन। पर उससे पहले फाइनेंशियल जगत पे नजर डालें भाई, पाउंड रुपए के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. इस समय जो भाई वो पाउंड का मूल्य दे रहे हैं रुपए में, भारतीय रुपए में, तो नोट कर लीजिए। Your one pound in British sterling can get you up to 128.3 rupees. 128 rupees aur 30 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of the June and be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. नोट कर लीजिए। पर जून महीने के अंदर भाई, जो जून समाप्त होने से पहले पहले ये ट्रांजेक्शन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, रिमेंबर TNC अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
9: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
8: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
9: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
8: For sponsorship and details, call 07803 633 926.

0: खबर किसको ये कल क्या हो अरे ये तो दिन की है जिंदगी।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: जैसे पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, तो नाम तेरा लेके कह दूं कि तीज त्योहार जैसी होती है, ईद की बहार जैसी होती है। भाई ईद मुबारक हमारे सभी श्रोताओं को।
1: Mika Radio Network wishes you Eid Mubarak. Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और भाई लोग कहते हैं कि ईद तो मीठे मीठे सपनों के साथ होती है, यानी अपनों के साथ होती है। अपने पास ना हो तो दिल भला कैसे उदास ना हो। देता है भला कोई सजा ईद के दिन भी, वो शौक मुझसे दूर रहा ईद के दिन भी। ऐ जाने जहां हमसे खफा ईद के दिन भी, शिकवा था कोई आपको क्या ईद के दिन भी। इस रोज तो मिट जाती है हर एक शिकायत, और आप हैं कि हमसे गिला ईद के दिन भी।

0: दिल करता है कि बिल तेरे नाम कर दूं।
1: तेरे नाम
0: दिल करता है कि बिल तेरे नाम कर दूं।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी रेट्स नोट कीजिए भाई। लैम्फाई की रेट सिस्टम एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.64 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 374.34, श्रीलंकन करेंसी 439.63, बांग्लादेशी टकाज 164.99 एंड अफगानी 84.09।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 106.53 pounds per gram. नीचे आ रहा है भाई धीरे-धीरे।
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Tata IPL 2026 अपने चरम पर पहुंच रहा है भाई। फाइनल मैच 31 मई को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी दो मुकाबले बाकी हैं। एक आज हो रहा है, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। देखते हैं कैसा रहता है भाई स्कोर के आंकड़े। मैच 3 बजे शुरू होगा दोपहर बाद, और स्कोर के आंकड़े हम बराबर बताते रहे।

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: अनुराधा पडवाल और सखियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना भाई. अनुराधा जी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. और अब अगला गीत सुनवाने से पहले कुछ शरारत सूझ रही है हमें.
3: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार.
2: सात दिनों में फंसना, अरे सॉरी हंसना चाहिए कम से कम 700 बार. लेकिन भाई फंसना भी हो जाता है कभी हंसते. अब देखिए प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का ये बड़ा प्यार था दोनों में. पति नौकरी के लिए बाहर जाने लगा तो सुबकते हुए पत्नी ने कहा,
4: देखो जी पहली बार इतनी दूर जा रहे हो, जल्दी आना.
2: पति ने कहा, तू घबराती क्यों है, रोज का एक पत्र तुम्हें लिखा करूंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे पास ही हूं. तो साहब रोज की एक चिट्ठी आने लगी. कभी एक आध दिन मिस हो जाता तो पत्नी बहुत उदास होती. डाकिये से कहती,
4: हे डाक बाबू चिट्ठी लाए कि ना.
2: आज चिट्ठी नहीं है.
4: अरे लाओ ना, अगर वो ना भेजे तो आप खुद से लिख रहा हो.
2: अब डाकी ने भाई इतना तो कर ही सकता था. वो पति की चिट्ठी जिस दिन नहीं आती वो अपने आप पास से लिख लाता. और साहब चिट्ठी रेगुलर मिलती रही, पत्नी को खुश होती रही और डाकिये से बड़ी हंसी के मुस्कुरा के बात करती थी. जब पति भाई सालों बाद लौट के आया तो पता चला कि वो पेन जो चिट्ठी लिखने वाला था वो चाकू बन गया और डाकिया डाकू बन गया.
4: हे डाक बाबू पतिया लाए के नहीं पाती.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और रीजे साहब, अब एक दो संदेश हैं आपके लिए. क्या है संदेश भाई, क्या पैगाम है आपके नाम है कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम जिनके साथ भाई लाइका रेडियो नेटवर्क करीब से जुड़ा है, उनमें एक तो है हमारे राम. लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द शो हमारे राम, स्टारिंग सुप्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा. बड़ी गजब की हिंदी बोलते हैं और भाई रावण के रूप में आ रहे हैं. वो रावण भी अच्छी हिंदी बोलता था, संस्कृत भी बोलता था. और भाई राहुल आर बुचर इज परफॉर्मिंग एज राम. इट टेक्स प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो. हैमर स्मिथ भी है, बढ़िया थिएटर है. तो भाई याद रखिएगा ये बात.
3: ये है लाइका रेडियो.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम. खेलें कूदें आराम करें और कोई बात ना पूछेंगे हम. सोशल सिक्योरिटी है ना, शान से जिएंगे.

0: सूखी सुखेरी खाते हैं भाई, मटर पनीर खाते हैं। मुझे याद आई ये भाई टर्म जो है हम अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए इस्तेमाल करते थे, वो हमारे कलाकार जब हम उन्हें बुक करते ना, हम दूर दूर शो करने जाते थे तो गर्ल्स बॉयज म्यूजिशियंस सिंगर सबको बुक करते, साउंडमैन भी, तो सब पूछते थे पेमेंट कैसी है, तो इशारे इशारों में बताते हैं भाई उनको। वो पूछते थे क्या मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा कि दाल मखनी मिलेगी, क्या मिलेगा। बड़ा अजीब था साहब, मटर पनीर या दाल मखनी। अगर कहते मटर पनीर तो खुशी खुशी चलते थे, दाल मखनी मिलता वो भी ठीक था, लेकिन अगर कहते भाई सिंपल आज तो बस यूं समझ लो कि रोटी रोटी पे है, कुछ नहीं है साथ में। चलिए आपको ये साउथ हॉल ट्रेवल वालों का संदेश सुनवाते हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और साउथ हॉल ट्रेवल वालों का संदेश है कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से भी ज्यादा का विश्वास जो उन्होंने लोगों में जगाया है, कमाया है भाई, और इसके अलावा ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी उन्होंने पाया है, जीता है, तो उन्हें संपर्क कीजिए। फोन देम ऑन 0208 574 8410।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो।

और पद्मा एकादशी के दिन भी किसी का जन्मदिन है आज। आज 27 मई। आपको बता दें कि प्रसिद्ध क्रिकेटर रवि शास्त्री आज ही के दिन जन्मे थे। रवि शास्त्री, ही वॉज बॉर्न इन 1965 इन बॉम्बे, मुंबई। और 1957 में आज ही के दिन जन्मे थे नागपुर में नितिन गडकरी। बड़े डायनेमिक लीडर हैं, आपको बताऊं भाई। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उससे लंबी बातचीत हुई थी, यहाँ बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और इंटरव्यू के आखिर में चाय पर बैठे तो कहने लगे, रवि जी आपको तो बीजेपी में होना चाहिए। मैंने कहा हम सब में हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के लीडर्स से हमारी मुलाकात होती है, सबसे बात होती है, सबको इंटरव्यू करते हैं। फिर भी

0: Hiker Radio Network wishes you Eid Mubarak. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और साहब रेट्स मैं बता देता हूँ करेंसी के. आप पैसे भिजवाना चाहें अपनों को तो LemFi के रेट से एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.76 इंडियन रुपीस, 374.29 पाकिस्तानी रुपीस. श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 442.37, बांग्लादेशी टके 164.95 एंड अफगानी 84.04.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: And let me speak about gold. भाई आज तो गोल्ड के ऊपर बहुत सारी बातें होनी हैं. Well, today gold rate जो थोड़ा नीचे आया है, ऐसा लगता है कि ढलान की तरफ, किसे क्या कहते हैं उसको सराफा भाषा में, कि सोने की कीमतें लुढ़की. कितनी लुढ़की? बहुत ज्यादा नहीं. द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 106.44 पाउंड पर ग्राम.
0: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स. विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होना है टाटा आईपीएल 2026 का. ये मैच आज का जो बेहतरवा मैच होगा, 74 खेले जाने, 2 मैच और बाकी हैं और भाई आखिरी वाला तो फाइनल है. लेकिन आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स में भाई ओ वैभव सूर्यवंशी को देखने का मौका मिलेगा. और क्या वो रिकॉर्ड बना पाएंगे, पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, देखते हैं भाई. बैटिंग उनकी देखने वाली होती है. तो मैच दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा और स्कोर के आंकड़े हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे. सुनते रहिएगा.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. LIKA Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Mom always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
2: T's and C's.

0: अप्लाई।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
4: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
3: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
4: Or sales at leicamedia.co.uk.
5: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
6: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
5: Jaymin Fryams, available at your nearest ethnic grocery stores.
7: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester. New hits on Leica Radio.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LycaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Lyca Radio, part of the Lyca Radio Network.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लीजिए साहब, रवि शर्मा के चलने का समय हो गया है। इससे पहले कि काले बालों में तार चांदी के झिल मिलाने लगे हैं, और इससे पहले कि पास की चीजें दूर की चीजें नजर आने लगे, लड़कियों की बजाय जब तुझको बेटा रवि शर्मा बूढ़ियां देखकर मुस्कुराने लगे और बच्चे माशूक की गली के सब तुझको मामा कह के बुलाने लगे, निकल ले अबे, निकल ले पतली गली से, निकल ले बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
4: ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गरम हूँ। अरे बाप रे बाप,
5: डर गया ना।

0: आज के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। ब्यूटीफुल गाना आपने एक नहीं बल्कि दो दो सुने। इस गीत में आवाज शामिल थी सुरेश वाडकर की, प्रेम रोग से चुना था मैंने इस गीत को। 1982 में ये फिल्म आई थी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एंड आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने किया हैना के गीत के साथ, 1991 की फिल्म थी, आपने ज़रूर देखी होगी। ज़ेबा बख्तियार एंड ऋषि कपूर थे इस फिल्म में एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। आई होप यू इन्जॉयड बोथ द सॉन्ग्स। यहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, खैरियत से रहें। और आज मैं आप सभी को ईद मुबारक भी कहना चाहूँगी, मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से ईद मना रहे हैं। ईद मुबारक टू यू एंड टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स एंड जिन्हें भी आप जानते हैं, जो भी सेलिब्रेट करें, सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 25 paisas. Agar aap aaj paise transfer karayenge तो आपको इतना रेट मिल सकता है, पर हो सकता है कि इससे कम भी मिले। इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
4: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
5: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
4: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
5: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
4: For sponsorship and details, call 07803-633-926.
6: Location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June.
10: 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA.
13: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mica Radio Network wishes you Eid Mubarak. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: जी हाँ, टेस्टी ट्रैक आ रहा है. टेस्टी सारे गाने बहुत टेस्टी होते हैं, सारे अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच. बड़े सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं. सहर, थैंक यू. मितुल पटेल, थैंक यू. यस, देयर इज सम टेक्निकल इशू विच वी आर सॉर्टिंग इट आउट. थैंक यू, यू डोंट नोटिस. वाओ, जगदीश जी बुशी में आप हैं. विजय गुदरी सटन में आप. भरत गंगाराम जी, नाजिया शकील, उल्लास इन टोरंटो, हंसा वोरा जी, प्रकाश सूत्र जी नॉर्थ, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आप जान ही चुके होंगे कि आज के गीतों में एक वर्ड है जो बार बार, एक नहीं बल्कि दो वर्ड है बार बार आ रहे हैं. मैं हूँ, मैं हूँ. तो पहला गीत कौन सी फिल्म से था? मैं हूँ खुश रंग हिना का गाना था. और दूसरा था मैं हूँ प्रेम रोगी, प्रेम रोग का गाना था. और तीसरा गीत तीसरी मंजिल से सुना आपने, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा. एंड अब ये क्या कहते हैं, राम और श्याम से चुना इस गीत को. आइए सुनते हैं लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत जो आप तक पहुँचा रहे हैं कोकन नूडल्स वाले.

0: आई, जल्दी से बता दीजिए कब सुना था ये गाना आपने लास्ट? मैंने अपने प्रोग्राम में आई थिंक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम प्ले किया है. उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया. दिनेश भगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एंड दिनेश पोपट जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम. हंसा वोरा जी, अरुणा जी आप सब ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू. इसी तरह से साथ देते रहिए. आइए अब बढ़ते हैं आगे.
1: Get all the latest travel updates for
2: Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
0: और भी अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है. अनारी नंबर 1 फिल्म से मैंने चुना है. 1999 की फिल्म थी. जसविंदर नरूला और अभिजीत भट्टाचार्य ने इस गीत को गाया. कौन सा गीत हो सकता है जिसमें मैं हूँ आई, मैं हूँ वर्ड है? कौन सा गीत है? सोचते रहिए, तब तक मैं प्ले करती हूँ.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bomb Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bomb Travel on 0116 266 6601. Or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Location of the hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: संध्या जी आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया था। एंड पमी सिंह जी आप सलाव में सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी और गीतों को भी। एंड आप कौन हैं? जयंती भाई, थैंक यू, आपने कहा कभी कभी का गीत सुनवा दें या रोटी कपड़ा और मकान एंड मैं तेरी मोहब्बत में त्रिदेव का गीत। इन तीनों गीतों की आपने रिक्वेस्ट भेजी है। क्यों मीनू रबती शौ मैनू राबती सॉन्ग, अच्छा ओके, चालबाज का गीत एंड मैं तेरा साहब ले बैठी, मैं तेरा शबाब ले बैठी, समथिंग लाइक दैट। वो आपने महेंद्र कपूर, मनू तेरा होना चाहिए, मनू तेरा शबाब ले बैठा, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इन गीतों की आपने फरमाइश भेजी है जय मुझ तक। तो लेट्स सी, अगर हो सका तो मैं आपकी फरमाइश में इस लिस्ट में से एक गाना ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूँगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.62, Pakistani rupees 374.71, Sri Lankan rupees 440.53, Bangladeshi taka 165.13, Afghan Afghanis 84.15.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LEICA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester.
3: Hello there, my name is Radio. And I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Pooja Sweets wale. Aur ab agle geet ki taraf badh le. Main hu tera geet.

0: फिल्म का नाम है महुआ और ये गीत मैं करती हूँ बड़े प्यार से अमरजीत आपके नाम, दिनेश पोपट जी थैंक यू आपका भी, तोशी जी सुन रही हैं आप और तोशी जी मिसेस शेख आप सबके नाम।
1: गीत

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में था पहला गीत कवाली नुमा गीत, द बर्निंग ट्रेन 1980 की फिल्म थी एंड गाना बहुत खूबसूरत, मतलब कवाली बहुत अच्छी थी। एंड दूसरा गीत मैंने चुना वो मैं नहीं उस फिल्म से, 1974 की फिल्म थी, आशा भोसले एंड नवीन निश्चल की आवाज़ें थी, नवीन निश्चल की आवाज़ थी मुझे पता नहीं या फिर गलत लिखा है यहाँ पर। एनीवे सो आशा सचदेव इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, तो हमने उन्हें याद किया इन गीतों के ज़रिए और साथ ही साथ उनकी फिल्मों के और भी बारे में बता सकती हूँ मैं आपको, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया है, जितनी भी फिल्मों में काम किया कुछ एक अर्ली जो फिल्में थी उनमें एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया, उसके बाद फिर वो साइड पर ही काम करती रही हैं। असली नाम उनका है नफीसा सुल्तान और आज ही के दिन इन 1956 में उनका जन्म हुआ था एंड शी इज़ बेटर नोन एज आशा सचदेव एंड शी इज़ वर्कड ड्यूरिंग 1970s and 1980s। शी एक्टेड इन अ फ्यू अर्ली फिल्म एज ए लीड लेडी इंक्लूडिंग द स्पाई फिल्म एजेंट विनोद, पर अनफॉर्चुनेटली एजेंट विनोद का गीत मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ एंड द थ्रिलर वो मैं नहीं जिसका गीत आपने अभी अभी सुना। एंड लेटर शिफ्टेड टू सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड शी हैज़ अपियर्ड इन 90 फिल्म्स इन हर करियर एंड इज रिसिपिएंट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रियतमा। प्रियतमा का एक गीत मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन और बहुत ज़्यादा गीत उनकी फिल्मों के नहीं हैं। एंड और आज अपना बर्थडे मना रही है, शी वॉज बॉर्न इन 1956 और शी इज़ द डॉटर ऑफ राजिया हु इज़ नोन एज रंजना एंड म्यूजिशियन अहमद अली खान आशिक हुसैन साहब की बेटी हैं। एंड आफ्टर हर पेरेंट्स डिवोर्स्ड एंड हर मदर री मैरिड शी अडॉप्टेड द स्टेज नेम आशा सचदेव। तो इनकी जिन जो फिल्मों में जिन इन्होंने काम किया जिन फिल्मों में उनमें नाम है बिंदिया और बंदूक, डबल क्रॉस, हिफाजत, हाथी के दांत एंड कश्मकश, एक नारी दो रूप, परी ने। सो आई ट्राई कि अगर मुझे कोई गीत अच्छा सा मिला तो मैं ज़रूर शामिल कर दूंगी, लेकिन हमारी तरफ से आशा जी को बहुत बहुत बधाई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर इनके जरिए आज आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो काम तो बहुत आसान है। You can either go to the branch or SBI Yono app के जरिए अगर आप ट्रांसफर कराएंगे by end of June तक तो you can win up to £75 voucher every day when you send money over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: जी हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आज आपको कितने रुपए मिल सकते हैं एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले, 128 rupees and 25 paisas.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
4: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी,
3: रीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। Hey! सखना रहे जो हस्बैंड जी
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
5: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
5: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैन्यूब प्राइम लोकेशन
2: हाई अप्रिसिएशन
5: इन दुबई

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना और इस गीत को मैंने चुना था प्रियतमा फिल्म से और इस फिल्म की हीरोइन थी कौन आशा सचदेव हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. और अब जरा ये भी जान लीजिए किशोर कुमार के जितने भी फैंस हैं आपके लिए खुशखबरी है. स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी संजय एंड द 515 बैंड. इट्स टेकिंग प्लेस ऑन 19th जून को और कहाँ? प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो.
0: Laika Radio Network wishes you Eid Mubarak. Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: एक और गीत आशा सचदेव की ही फिल्म हिफाजत से.
3: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना.

0: आशा भोसले, सुरेश वाडकर और आरडी बर्मन साहब की आवाजें फिल्म फ्रॉम द फिल्म हिफाजत, और इस फिल्म में भी काम किया था आशा सचदेव ने। आप माफ़ी चाहती हूँ गीतों के साथ बात करने की, लेकिन बहुत सारे और भी दूसरे काम साथ साथ करने हैं। इन्होंने एजेंट विनोद में भी काम किया था, एक ही रास्ता इन 1977, एंड शी वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर हर रोल एज नीतू सिंह्स बेस्ट फ्रेंड इन प्रियतमा इन 1978। इसके अलावा मामा भांजा, लफंगा, महबूबा, सत्ते पे सत्ता, दुनिया मेरी जेब में, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। आशा सचदेव, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: और मैं लाइका गोल्ड पर आपको जल्दी से बता दूं, कुमार सानू जी का शो हो चुका है और आपने खूब इंजॉय भी किया, एंड मेला हो रहा है। लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबी पार्क, ऑल्सो द ब्रैडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑफ ऑगस्ट एट सिटी पार्क एंड सेंटेनरी स्क्वेयर में।
2: Hello, wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
0: राइट भी आपको साउथ हॉल ट्रेवल्स वालों की तरफ से भी एक मैसेज दे दें, मेक द समर मेमोरेबल विद द साउथ हॉल ट्रेवल्स, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: Okay, बता दें इस लेटेस्ट जो एपिसोड है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, दीप राजा इज द होस्ट। इस डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज, या फिर अगर किसी को हम ताने भी मारते हैं, टीज करते हैं, तो वो भी अब्यूज होता है। सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एपिसोड। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा, ये है लाइका रेडियो।
3: गोल्ड आफ्टरनून्स इज स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम क्लासिक स्नैक्स टू न्यू फ्लेवर्स, फाइंड योर फेवरेट्स एट योर नियरेस्ट स्टेशन स्टोर।
4: द वॉइस दैट टर्न्ड लव, हार्टब्रेक एंड मेमोरीज इनटू टाइमलेस सॉन्ग्स, पेपेज प्रेजेंट्स
5: आतिफ असलम लाइव इन द यूके।
6: ओ झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त।
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: Pepe Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: Be part of a historic grand opening.
14: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Punjab, the biggest tunes.

0: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
3: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
2: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
3: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
4: इफ आई एम गोइंग आउट ऑन माय न्यू पैडल बोर्ड, द लास्ट थिंग आई एम टेकिंग इज माय फोन, राइट? बॉयंसी एड फाइन, बट मोबाइल, माय होल लाइफ्स ऑन दैट फोन, व्हाई वुड आई रिस्क लूजिंग इट इन द Coast Guard, help!
5: Okay, help's on its way.
6: Grab my hand!
7: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
10: जगदात्री,
9: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
10: माला ले आना, लाया जी।
9: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
11: टीम, get ready for the action।
9: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, Virgin Media 809, BT394.
12: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
13: Listen back to your favorite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म डर 1993 की फिल्म. शाहरुख खान थे हीरो, जूही चावला थी हीरोइन और इस फिल्म में सनी देओल भी थे. एंड दूसरा गीत मैंने चुना फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी 1980 की फिल्म थी, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें. और प्रोग्राम का लास्ट आवर है. मुझे उम्मीद है अब तक का प्रोग्राम आपने पसंद किया, जिन मेरे साथियों ने बराबर मेरा साथ दिया थैंक यू एवर सो मच. पिछले दो घंटे आपने मेरा साथ दिया एंड नाउ इट्स 3:14, दोपहर के 3:14 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ है टिल 4 o'clock. 4 o'clock के बाद तो आ रहे हैं सैंडी शाह जी, जो कि आपके लिए ड्राइव टाइम शो लाते हैं. बहुत प्यारे प्यारे गीत और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, ये और वो बहुत कुछ, आपके साथ क्विज भी खेलते हैं, तो उनका साथ देंगे आप. और अब मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं जरा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो ये SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो काम बहुत आसान है. यू कैन ईदर गो टू द ब्रांच और उनके योनो SBI UK का जो ऐप है उसके जरिए आप घर बैठे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब तो एक ऑफ़र है आपके लिए बहुत अच्छी, एक नहीं बल्कि दो दो. सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds. और एक ग्राम सोने का कॉइन चाहिए तो एवरी वीक व्हेन यू सेंडिंग ओवर 2,000 pounds तो आपको 1 gram गोल्ड कॉइन मिल सकता है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: Like our radio.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India. Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
5: Hamza Samosas, 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions, only 99p.
5: Suhana Masalas, 2 for 150. Ramdev Namkeen, 2 for 149.
4: Hira Gram Flour, 179. Heinz Ketchup, 279.
5: Kesar Mango Pal, 149. Full Makhana, 245. Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU. Ya Rolette Hill, LE54UN.
6: While stocks last, this Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Some of those delicious noodles.
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
16: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: Ye hai Leica Go

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी हाँ, खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अनुराधा जी का भी आज आर्टिस्ट ऑफ द वीक में मैंने जो गीत शामिल किया, मरते दम तक फिल्म का टाइटल ट्रैक था, साथ दिया था मोहम्मद अजीज ने। फिर आपने दो बातें प्यार भरी कर लूं, आंखों आंखों में फिल्म का गीत था, 1972 की फिल्म। एंड मेरे साथी कहते हैं कि इतने प्यारे प्यारे गीत कहाँ से ढूंढती है, तो मैं यहीं से ढूंढती हूँ। और अगला गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा सुनने।
0: Is like a radio across the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: फिल्म देखी थी आपकी कसम, बहुत प्यारी फिल्म थी और ये गीत भी बहुत सुंदर है। आपकी कसम का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। इस गीत में दो आवाजें आप सुनेंगे, किशोरदा एंड लता जी की। गाना किस पे पिक्चराइज हुआ था याद है आपको? राजेश खन्ना थे।

0: लिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं,
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 TV, प्रेजेंटेड बाय TravelUp.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
6: Bollywood's biggest 90s songs.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made it the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
0: Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
8: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
0: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
12: Presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
13: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
10: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
15: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय TravelUp.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: लाइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Dil diya galla karange na.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
7: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.